रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके,

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

Assalamu alaikum, waddab, and home. Welcome to all of you. दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम और लो हाजिर है और जेजी लेकर शो व्हाट्सएप।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम रेडियो चैनल पर ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट
3: जी हाँ, गर्मी की जिंदगी चल रही है फास्ट और बेटा हाँ आज है ओवरकास्ट। सुबह होते ही जैसे मैंने खिड़की खोली तो हमसे बारिश बोली कि आओ आपका करेंगे वेलकम खा के चिलगम। ऐसा ना और कॉस फॉर टुडे क्या है गेंदा भैया जज्बातों में बह गए थे, बट पत्ते की बात यह है कि आज बिल्कुल बारिशें बरसेंगी। 27 डिग्रीज रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर और वही अगर हम अभी की बात करें तो बादल सूरज को घेरे रखेंगे और दोपहर होते होते छिम छम बारिशें बरस सकती हैं। यूवी इंडेक्स अभी के लिए वेरी वीक पर ह्यूमिडिटी 78%, विंड स्पीड है 0 पर विजिबिलिटी है 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 6:05 पर, आज का सनसेट होगा 6:59 पर। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि आप पानी वाला डांस करेंगे तो भैया पानी वाले डांस के साथ पानी वाला म्यूजिक रेडियो चुनार पर, एड फ्री म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा। याद रखिए आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मजीद मालूम के लिए लॉग इन टू www.radiochennai.com। मैं हूँ जॉक्स, मेरी जान सडेक्ट लड़का

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल व्हाट्सएप। जी हाँ, वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पर जो होता है वायरल हम पहुँचाते हैं आप तक। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं इंडिया की फेमस गेम गिली डंडा की। यह एक वीडियो इंटरनेट पर सरफेस हुआ जहां पर अमेरिका देखते देखते इस गेम को कॉपी मारा और नाम भी बदला। अमेरिकन खेलते हुए दिख गए इंटरनेट पर डेंडी, जो कि सेम टू सेम गिली डंडा है, बस उन्होंने नाम बदला है इसका। एक वुडन पैग, एक लॉन्ग स्टिक और दूर से दूर गिली को फेंकना, यही है डेंडी। और इस पर हो रहा है इंटरनेट पर बातचीत डिबेट के ये गेम भी इन्होंने कॉपी मारा है का। चाहे कॉपी जितना भी मारे, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहता है और वही ओरिजिनलिटी पहचान है इंडिया की। पूरी नजर ना हम पे डालो, यहाँ दुनिया का तो वजूद नहीं होता अगर इंडिया नहीं होता। रेडियो चना 90.4 FM, हम हैं हिंदुस्तानी। मैं हूँ जॉग्स, आप सुन रहे हैं मजदार शो, सब सीरियल दरकाते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिड़ार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिड़ार 90.4 FM शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है रेज योर वर्ड्स नॉट वॉइस। It is rain that grows flowers, not thunder. और दिल की धड़कन रेडियो चैनल सिटी हट धड़काते रहो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो और हर रोज की तरह भाई बचताने आए मेयर इन द स्टूडियो। जी हाँ, मैं हूँ जॉक्सिस और शो का हिस्सा आपने भी बनना है। बाय बाय बाय। आपने क्या करना है, फोन उठाना है और बोलना है हाय। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट या कर सकते हैं कॉल भी। 8899-4904-9904 is the number. 8899-4904-9904 number. Yes, don't end the line. Part of the one. Sign in the line. Sweet. अब ये है सोशल मीडिया का ज़माना है तो दिल दीवाना है, और आपने अगर बात को हम तक पहुंचाना है, साथ निभाना है तो साथ ही साथ निभाना और डीएम करके जाना। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा जॉक ज्यूस के नाम से। ज्यूस के एक्स ई यू एस मेरी आईडी, आप सर्च कर सकते हैं ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। आप गूगल का ब्यूगल बजा सकते हैं, वहां पर भी मिलेंगे हम। www.radiochannelpur.com पर क्लिक करके लाइव लिसनिंग का ऑप्शन अगर आप दबाते हैं तो आप हमें घर में सुन पाते हैं, गाड़ी में हमारी आवाज अपने साथ बैठने वाले दोस्तों यारों तक पहुंचा पाते हैं। और आज का टॉपिक, जी हाँ, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन रोबोट्स के बारे में जो आपको खाते Once again, yo, जो आपको खिलाते पिलाते आपकी सर्विस बजाते। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट्स की और रेस्टोरेंट्स में मौजूद रोबोट्स की। अब हर एक क्षेत्र में एआई वगैरह है तो ये एआई और रोबोटिक्स जो है अब रेस्टोरेंट्स में आ गया है। अब शेफ जो है अपनी टोपी ऊंची नहीं करते भैया, रोबोट्स उन्हें बताते हैं कि एआई की मदद से कैसे हम खाना उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनाएंगे। आज हम आप तक यही बात पहुंचाएंगे कि रोबोटिक रेस्टोरेंट्स क्या है इनसे रिलेटेड फैक्ट्स और किस तरह से ये इंसानों को कर रहे हैं रिप्लेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कम होगा कुछ भी और नहीं मिलेगा आपको बेस भैया, गाना फेस टू फेस। जी हाँ, बॉलीवुड की हिस्ट्री में अनुमानित का कहना है कि वेल, मैंने तो ये गाना जल्दी जल्दी में बनाया, सुबह बीवी ने चाय लाया और मैंने गाया गरम चाय की प्याली हो, और उसको पिलाने वाली हो और पिलाएंगे हम आपको म्यूजिकल डोज लाइक एवरी रोज। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाएं। 8899-4904-9904 नंबर और इस फ्रीक्वेंसी पर जग जूस के साथ म्यूजिकल डोज एवरी रोज मस्तार शो वाज अप सिटी हिट। दरगाते रहो

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jesus. Kom her, ja.
1: Jesus. Jesus.
2: और इस फ्रीक्वेंसी और दिल के धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपके सफर का हम सफर जैक ज्यूस। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक रेस्टोरेंट्स की। ऐसा नहीं है कि आजकल जब सब विकसित हो रहा है तो रेस्टोरेंट्स पीछे हो रहे हैं, बल्कि आज भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स, स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल यूनिट्स है फ्रॉम फूड प्रिपरेशन टू टेबल सर्विस एवरीवेयर। और अगर हम देखें तो 75% का टर्नओवर रेट है इन रोबोटिक्स का। और वही अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट्स में जी हाँ खासा इजाफा देखने को मिला है, जहां पर हम बात कर सकते हैं रोबोटिक शेफ्स और प्रेप स्टेशंस की, जहां पर मैकेनाइज्ड वर्क, ऑटोमेटेड इंग्रेडिएंट डिस्पेंसर और फिलिप पिंग आर्म्स हैंडल रिपीटेटिव क्लीनरी टास्क, और इतनी सारी टास्क है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो गई है। और वही अगर हम देखें तो दिन ब दिन जो रोबोटिक्स विकसित हो रहे हैं, AI जो इंटीग्रेट हो रहा है उनके साथ, उससे ये भी देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी जैसे कि हम सर्विसिंग रोबोट्स लाते हैं अपने घरों में, वैसे ही रेस्टोरेंट्स में भी हमें सर्विस देखने को मिलेंगे। बट निगेटिव पार्ट इज के क्या इससे इंसानों के रोजगार पर असर पड़ेगा या नहीं? जी हाँ, जानने वाली बात यह भी है कि इससे पड़ेगा असर, पड़ेगा जरूर पड़ेगा, बट पॉइंट इज कि क्या रोबोटिक्स हर एक चीज को रिप्लेस कर पाएंगे। अगर हम रोबोटिक रेस्टोरेंट्स की बात करें तो फूड रनर से लेकर बस बॉयज तक एवरीवेयर रोबोटिक्स आते हैं। और वही जो एक ड्रिंक सर्वर जॉब होता था, अब वो भी रोबोट्स कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। नो पॉइंट इज कि कितना असर पड़ रहा है इससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर, डाइनिंग कल्चर पर, क्या फैक्ट्स एंड क्या नेगेटिविटीज है, उन पर भी बात होगी। फिलहाल रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स इसके साथ सिटी हट दरगाते रहा। शो का हिस्सा बनने के लिए 9999904 इज द नंबर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जुड़ने के लिए आप DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जॉक्स उसके नाम से मिलूंगा, JOCKXEUS। मैं हूँ जॉक्स, सिरे हट दरगाते रहा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Tech Talks with RJ Zeus।
4: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
5: व्हाट्सएप पे
4: तभी व्हाट्सएप
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

नौ एंट्री का है भैया, एंट्री तो हमने मार ली और वो भी बराबर 12 बजे। आपकी गलियों में क्या है हाल चाल, मुझे बताइए अपने दिल का हाल, क्योंकि शो चुनाव बीट स्टार्ट हो चुका है विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि बस ये है शो चुनाव।

0: करना चाहते हैं मुझ तक और मैं पहुंचाऊंगी वहां हवा तक, जहां जहां तक आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहुंचे रेडियो चुनार की ऑडियंस तक। तो आप भी शो का हिस्सा बन सकती हैं और मुझे बताइए कि क्या कर रहे हैं आप। और मौसम एकदम ही ऑसम हो रखा है और कितना अच्छा लग रहा है कि बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश, सुबह ऐसा मौसम होता है मजा आ जाता है। तो कैसे मजा आ रहा है मुझे बताइए और शो का हिस्सा बन जाइए।
1: के सुपरमैन ना कोई टीम ना कोई प्लान।
0: नहीं, मेरा ड्रीम और प्लान तो बड़ी शॉर्ट है कि भाई बातें करनी है और आपसे बातें करनी है और वो भी लगातार बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ।

ये फायर ब्रिगेड तो नहीं मंगवा सकते, बैक टू बैक सॉन्ग्स बता दिया है आपको, आपके लिए चला सकते हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

सब सर हिलाने शौकी ने चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे काली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

शो चुनाव भी सब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। और बात हो रही है नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर की और बहुत सारी से ट्रैफिक अलो किया जा रहा है, आराम से आ सकते हैं जा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। एंड क्लियरली अगर हम देखें तो वेदर कंडीशंस बेटर होने के चांसेस है, पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि बारिशें हो सकती है, जैसे कि अभी भी हमारे अभी अगर हम देखें तो कश्मीर में अभी बारिश हो रही है कई कई जगहों पर, तो मे बी वेदर कंडीशन शायद से और बिगड़ भी सकती है या फिर इम्प्रूव हो सकती है। और जो भी अपडेट रहेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आपकी दस्तांगे वो आप ही बता दो कि दिल में क्या चल रहा है, और स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब हमें पता हो सीट बेल्ट की क्या अहमियत है, ड्राइविंग एसओपीज की क्या अहमियत है, गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे तो कितना नुकसान होगा, तो करना ही क्यों है वो चीज़ें, तो बताइए मुझे, शो का हिस्सा बन जाइए। आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM, शो चुनार बीट्स। आप एंजॉय कर रहे बीट्स ऑन रिपीट, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM पर।

آرچه ساحل The Dawn of Radio.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है, और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

देखिए, पल भर में कोई भी चीज़ चोरी नहीं होती जब तक हम ना चाहे पल भर में उस चीज़ को अपना आप सौंपना या फिर उस चीज़ में घुल मिल जाना, उस चीज़ को इतना सीरियसली लेना कि हम समझ जाए कि एक मोमेंट ऐसा होता है हमारी लाइफ में, वो हमारा मोमेंट होता है और हम उस एक मोमेंट के लिए उस मोमेंट में अपना पूरा लाइफ का, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ हम उस मोमेंट के नाम कर देते हैं। समटाइम्स हमें पता नहीं होता है कि प्यार क्या है या फिर लोग रिश्ते जो है, हम उसमें बहुत गिविंग हो जाते हैं, यानी कि हम ही होते हैं उसमें। सामने वाला इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश ही नहीं करता, या फिर वो ये समझते हैं कि इन्हें आसान है हर्ट कर, इनको बोलेंगे ये तो शायद, इनको तो आदत है सुनने की, पर ये नहीं होता है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम अक्सर कहते हैं कि रिश्तों में ईगो की वजह से चोट पहुंचती है या फिर रिश्ते ख़राब होते हैं, पर ये भी तो समझना है ना कि जब रिश्ते में इज्जत ही ना हो तो वहाँ पर ईगो नहीं, इट्स ऑल अबाउट दैट आप खुद को पाते ही नहीं हो कहीं पे। तो ज़रूरी है कि सोच समझ कि हम भी डिसीजन लाइफ में ले, और ये सोचे कि जहाँ पर हम मेंटली हमारी इज्जत या फिर जहाँ पर हमारा वैल्यू हो वहाँ पर हमने अपना पूरा एफर्ट भी देना है, ज़िंदगी हर चीज़ सोचनी है कि ये मेरा मोमेंट है तो इसमें हमने जीना है। आपका क्या है कहना, 80999 0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए और शो चिनार फीस का हिस्सा बन जाइए।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।

0: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। आज

0: आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल हंगामा और ड्रामा बोले देखिए दो बज चुके हैं, दो से चार रेडियो सुनार पे होता है हंगामा ड्रामा एंटरटेनमेंट क्या बजिंग है, लाइफ का ऐसा फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। और देखिए शो शुरू हो चुका है, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ होगा यहाँ। ऑब्वियसली दैट इज व्हाट वी डू ऑन द शो, कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं और आते आते प्ले करते हैं कुछ खास, कुछ क्रेजी। और अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो बस आपको

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

welcome back to show Hangama. जी हाँ, गामा है, ड्रामा है, इन्फॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है और अपडेट्स भी जरूरी है. अभी की बात करें तो रेलवे अपडेट का समय हो चुका है और आप तक पहुंचाते हैं कि लोकल जो सर्विसेज हैं वो एज पर द शेड्यूल है, जो समर टाइम टेबल है, और आप अवेल कर सकते हैं समर टाइम टेबल थ्रू द इंडियन रेलवे ऐप, दैट इज रेल वन. चाहे आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में जानना हो, सर्च बिटवीन स्टेशन, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, एवरी थिंग इन वन गो. और इसके अलावा सिर्फ जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं, रेलवे लिंक्स के बारे में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंडियन रेलवे के बारे में जो आपको पता चल सकता है. और आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशन पर भी जा सकते हैं जहाँ बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है. अब ये है कि रेल वन ऐप इज मोर एफिशिएंट बिकॉज इट गिव्स यू द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड ऑन द एक्यूरेट ऑन गो टाइम. Enjoy Kiji back-to-back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM.

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: हाय गाइस, आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ वो मेरे हीरो करण सिंघानिया, जो कि आज बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, उन्होंने ये गाना पहली बार

हम तो हंस के ही बोलते हैं आपसे प्यार भरी बातें, प्यारों के साथ होता है विचार, विचार से है सही मेरे यार वाला रेडियो सुनार। मैं हूँ अस्मा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा है, ड्रामा है, और कुछ ही ट्रैक से बात वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेज शो, लाइक आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक जो हमारा हमेशा कुछ नया होता है, कुछ चटपटा सा होता है, माय गॉड मजा आता है बात करने में। बट देखिए अभी की बात करें तो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो और अपने बोल हमसे बोलिए। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई, सच्ची।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

वेलकम बैक टू द शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज हम स्ट्रीट फूड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में जो भी कंट्रीज हैं वहाँ का जो पर्सनल और कल्चर से रिलेटेड या अपनी एथनिसिटी से रिलेटेड जो भी स्ट्रीट फूड है, अभी दुनिया इतनी छोटी हो गई है, डिजिटलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि हर किसी कोने से जो भी स्ट्रीट फूड है अभी किसी भी कोने में आप किसी भी और कंट्री का स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। और स्पेशली अभी बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में चाइनीज कॉन्टिनेंटल खाना काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा मेक्सिकन जो हालापीनोज है वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अभी आउटलेट्स यहाँ, स्पेशली सोपोर की बात करें तो यहाँ जो डाइनिंग कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में, ऐसे कैफ़े बिजनेस में, और जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं। व्हाई? बिकॉज स्ट्रीट फूड और जो डाइन इन कल्चर है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोग पसंद करते हैं जाना। और क्या ये सही है? अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो डाइन इन कल्चर इतना जितना बढ़ चुका है उतना तो सही नहीं है, बट अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें, एक रीजनल डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें, कल्चर मिक्सिंग के हिसाब से देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रीट फूड ऑफ इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ इटालियन क्यूजीन। सो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, खाने को मिलती हैं। सो एक कल्चर मिक्स होता है। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है देखना कि हम अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखें और साथ में चीज़ें एक्सप्लोर भी करें। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार। कुछ ही ट्रैक से बाद में वापस आऊंगी करने और भी बातें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी डू। मैं हूं अस्त्रा सुंदरी, रेडियो सुनार 90.4।

ऐसी अदाएं तो आप बराबर दो से चार देखते हैं क्योंकि हंगामा ड्रामा होता है बिड़ू। और अभी की बात करें, देखिए अभी शो खत्म होने जा रहा है, चार बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन। और टुमारो इज वेंसडे, यानी कि रेडियो गर्ल्स हमारा पूकी सेशन, यानी कि गर्ल्स पूकी सेशन होने वाला है दीवा और मेरे साथ। और बने रहिए, जुड़े रहिए ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, साइनिंग ऑफ for today, over and out.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

0: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने

0: पानी पड़ती है।
1: ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दांत कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम रात सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सारे का गम पा मग रे मा ग।
3: हाँ।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना ओ मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा आहा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ,
1: इतनी सी बात न समझा जमाना।
0: आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूं, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।